0: कानों वाला की पैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल।
1: यो यो चेक इट आउट रिमिक्स। हंटर

0: क्या देख रहे हो?
1: हाँ, वहां हजारों बिखरे सितारों के बीच चमकते
2: नारियल।

0: कर रहे हैं?
1: तुमने तो मुझे बुलाया था।
0: नहीं नहीं, आपकी तबीयत तो ठीक है। मैंने कब बुलाया आपको?
1: यही कुछ 9-10 साल पहले। बड़ी जल्दी भूल गए।
0: 9-10 साल पहले
1: तब मैंने कहा था कि अगर सब प्रोग्राम करेंगे तो देखिएगा। माफ करना सुनिए, मुझे आने में